अस दर्शन होत कहूं नाहीं। तुलसीदास का कृपा हितकारी, मोहे न अचरज परत निहारी। जय राम सीता राम जय जय राम, जय राम सीता राम।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति.
1: रिकी रामलगन विथ यू, एंड इट्स योर सुंदर सपना. 102.7 FM.

शांत नित्य अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य व्यापक एवं समर्थ जगत के ईश्वर देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले हरि करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम नाम वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हिम आई एडोर द पैशनलेस द इटर्नल बियॉन्ड द ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ कॉग्निशन द सिनलेस द बिस्टोअर ऑफ द पीस ऑफ फाइनल लिबरेशन हु इज कंटिन्यूअली वर्शिप बाय ब्रह्मा Shiva and Shesh, noble by Vedanta, omnipresent, the sovereign of the world, the preceptor of the gods, Hari himself in the delusive form of man, the mine of compassion, the chief of the house of Raghu, the jewel of kings, whose name is Rama.

हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं सच्चे मन से विनय करता हूँ, आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वज्ञाता हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आपकी अनन्य भक्ति के सिवा मेरे मन में कोई दूसरा इच्छा नहीं है। हे रघुनाथ, मुझे अखंडित भक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे मन को काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि दोषों से रहित कीजिए। ओ रघुपति, आई डिक्लेयर द ट्रूथ एंड यू टू नो द इनमोस्ट सीक्रेट्स ऑफ ऑल, दैट देयर इज नो अदर क्रेविंग इन माय हार्ट बट दैट यू शुड ग्रांट मी परफेक्ट डिवोशन। ओ क्रेस्ट ज्वेल ऑफ द रघुज लाइन एंड मेक माय हार्ट क्लीन ऑफ लस्ट एंड एवरी अदर सिन। रामायण कथा का परिचय। इस कथा का विवरण सुंदरकांड से लिया गया है और इसका संबंध भगवान राम और विभीषण के मिलाप से है। दुष्ट रावण के देश निकाला देने के बाद विभीषण, जिसे महाज्ञानी वाल्मीकि ने धर्मात्मा और सद्गुणी कहा है, ने दयाशील प्रभु में शरण ली। विभीषण के महासागर के दूसरे तट पर पहुंचते ही सुग्रीव, अंगद और हनुमान ने बड़े आदर सहित उनको स्नेहपूर्ण प्रभु के दर्शन कराए। इस प्रकार श्री राम की छवि को निहारते हुए संत तुलसीदास ने विभीषण के जीवन के उन क्षणों को याद किया। इंट्रोडक्शन टू रामायण कथा। This katha or narrative is taken from Sundar Kand and relates to the meeting of Vibhishan with Lord Rama. After he had been banished from Lanka by his elder brother, the evil-minded Ravana, Vibhishan, whom the sage Valmiki refers to as Dharmatma or the virtuous, sought refuge in the all-merciful Lord. Upon his arrival on the other shore of the ocean, Vibhishan was respectfully escorted by Sugriv, Angad, and Hanuman into the presence of the affectionate Lord. This is how Saint Tulsidas recounts that defining moment in the life of Vibhishan as he marveled at the sight of Sri Rama.

फिर सौंदर्य के धाम श्री राम को देखकर वे पलक तक झपकाना भूल गए और टकटकी लगाकर उन्हें देखते रहे। भगवान की भुजाएं विशाल हैं, लाल कमल से कमान आँखें हैं और शरण में आए हुए का भय दूर करने वाला सांवला शरीर है। When his eyes fell on the Lord's face, Vibhishan stopped winking and stood motionless with his gaze fixed on Sri Ram, who was the incarnation of the Supreme Paramatma in the form of a perfect man. The Lord had exceptionally long arms, eyes like lotus petals, and a darkish complexion representative of the fact that Sri Rama was all-powerful, radiant, and resolute.

सिंह के कंधे के समान पुष्ट कंधे और सुंदर चौड़ी छाती है तथा मुख कमल असंख्य कामदेवों के मन को ही मोहित करने वाला है। भगवान का दर्शन कर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और देह अत्यंत रोमांचित हो उठी। तब मन में धैर्य रख कर उन्होंने सुंदर कोमल वचन कहे। विभीषण saw the Lord in all his resplendent glory, possessing lion-like shoulders and a broad chest capable of subduing his foes. And the Lord's charming face ravished the soul of countless cupids. The marvelous sight brought tears to the eyes of Vibhishan, and a deep thrill ran through his body. With streaming eyes and trembling limbs, Vibhishan, who was established in dharma or eternal wisdom, composed himself and began to speak in gentle tones.

छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने समीप बैठा लिया। भक्तों का भय हरण करने वाले श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित आप अपना कुशल मंगल सुनाओ, तुम तो बड़ी कठिन जगह पर रहते हो। श्री रामस यंगर ब्रदर लक्ष्मण आल्सो एम्ब्रेस्ड विभीषण एंड दे सीटेड हिम बिसाइड देम। Lord Rama then spoke pleasing words that dispelled the fear of his devotee. O King of Lanka, tell me, is all well with you and your family, placed as you are in vicious surroundings? How the Lord reacts when the soul surrenders unto him is depicted by the words and actions of Sri Rama when Vibhishan approached him for protection. The conduct of Sri Ram proves beyond doubt how our prayer at the feet of the Lord for forgiving all our transgressions never goes unrewarded.

की मंडली के बीच निवास करते हो। ऐसी स्थिति में हे मित्र, तुम अपने धर्म का किस प्रकार पालन करते हो? मुझे तुम्हारे समस्त आचार विचारों के बारे में जानकारी है। तुम अत्यंत नीतिज्ञ हो, तुम्हें अन्याय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। श्री रामा सेस्तु विभीषण, योर होम इज इन एन ईवल एनवायरमेंट, हाउ माई फ्रेंड वेर यू एबल टू मेंटेन योर डिवोशन एंड डेडिकेशन टू गॉड इन द मिडस्ट ऑफ सो मेनी विकेड मैन। आई एम कंप्लीटली अवेयर ऑफ द सेंटली कंडक्ट ऑफ योर लाइफ, योर एक्सलेंस इन वर्च्यू एंड योर अवर्जन टू ईवल। The great qualities of Sri Rama come to light on this occasion. Firstly, his omniscience, and secondly, his infinite compassion for his devotees.

का साथ कभी ना दे। तब विभीषण ने कहा, अब मैं आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। श्री राम कंटिन्यूज, ओ डियर वन, मे प्रोविडेंस कीप अस अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ द विकिड, इट इज मच बेटर टू लिव इन हेल। विभीषण रिप्लाइड, माई डियर लॉर्ड, आफ्टर हैविंग द डिवाइन ग्लिम्प्स ऑफ योर लोटस फीट, there is no question of asking for anyone's welfare. The very glimpse has made me glorified, sanctified, and purified for all times to come. I am well since you have shown mercy on me and recognized me as your humble devotee. It is said that when a devotee takes refuge in the Lord, he has no affinity with prakriti or matter, and the Lord's nature descends upon him.

लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद और झूठे अभिमान आदि अनेक दुष्ट विचार तभी तक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तर्कश धारण किए हुए प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में नहीं बसते। विभीषण से सुश्री राम, द सिक्स इंटरनल एनिमीज विच आर द प्रिंसिपल इंपेडिमेंट्स टू द परस्यूट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, दैट इज लस्ट, ग्रीड, एंगर, जेलसी, arrogance and pride will infest a man's heart

ममता तो पूरी अंधेरी रात के समान है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक प्राणियों के मन में घर किए रहती है, जब तक कि उन प्राणियों के हृदय में भगवान का प्रताप रूपी सूर्य नहीं उदित होता। विभीषण कंटिन्यूज, अटैचमेंट टू द वर्ल्ड इज लाइक एन इंटेंसली डार्क नाइट, विच इज सो डिलाइटफुल टू द ऑल्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अवर्जन। Attachment to sense objects abides in the heart of a creature so long as the light of wisdom or the sun of the Lord's glory does not shine there. Here Vibhishan echoes the sentiments of the Gita, wherein the Blessed Lord said, "Go on doing your duty without attachment, for doing work without attachment, man attains the supreme."

हे रामचंद्र जी, आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ। मेरा बहुत बड़ा भय मिट गया। हे प्रभु, आपकी कृपा जिस पर होती है उसे तीनों प्रकार के सांसारिक कष्ट, आध्यात्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक ताप बिल्कुल नहीं होते। विभीषण एड्रेसेस श्री रामा सेइंग, हैविंग सीन योर लोटस फीट ओ लॉर्ड रामा, आई एम नाउ क्वाइट वेल एंड माई ग्रेव फियर्स हैव बीन डिस्पेल्ड। And here we see the spiritual enlightenment of Vibhishan when he says to Sri Rama, He who gets established in you through unflinching devotion is not affected by the threefold torments of mortal life, which are miseries emanating from natural phenomena known as adhidaivik, miseries pertaining to bodily ailments known as adhyatmik, and miseries attributed to other creatures, including the animal kingdom, known as Adhi Bhauti.

मुझे देखिए, मैं राक्षस हूँ, अत्यंत नीच स्वभाव वाला हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बहुत अच्छा कल्याणकारण आचरण नहीं किया, जिनके रूप का दर्शन बड़े बड़े ऋषि तपस्वी लोगों के ध्यान में भी नहीं आता, उन प्रभु ने कृपा करके स्वयं हर्षित होकर स्वयं मुझे हृदय से लगा लिया। विभीषण कंटिन्यूस, I am a demon utterly vile of nature and have never observed any pious practices, and yet the Lord has been pleased to embrace me to his heart, displaying his kindness. And Vibhishan once again reveals his supreme knowledge of scriptural injunctions when he compares his good fortune from devotion to Sri Ram as opposed to devotion to the unmanifest. In his profound statement, Vibhishan says, even the sages find it difficult to comprehend the Lord for all their intense meditation.

हे कृपा निधान सुख के सागर प्रभु श्री राम, यह तो मेरा अत्यंत उत्तम भाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित आपके श्री चरण कमलों का आज अपनी आँखों से दर्शन किया। विभीषण सेज, ओ ऑल ग्रेशियस एंड ऑल ब्लिसफुल श्री राम, हाउ ग्रेट इज माई गुड फॉर्चून। I am immensely blessed in that I have beheld with my own eyes the lotus feet of the Lord, which are worthy of adoration even to Brahma and Shiva. Here Vibhishan refers to all aspects of the Supreme Lord, that is the Lord Brahma as creator, the Lord Sri Rama as Vishnu the preserver, and the Lord Shiva as destroyer.

और सभी तरह के झूठे घमंड, आसक्ति और तरह तरह के छल कपट छोड़ दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र सच्चे साधु के समान बना देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, पत्नी, देह, संपत्ति, घर, मित्र और परिवार। श्री रामा सेज, इफ सच ए मैन कम्स टू मी सीकिंग माई रेफ्यूज विथ ह्यूमिलिटी एंड ही गिव्स अप ऑल वैनिटी, infatuation, hypocrisy and deceit, then he becomes the object of my divine compassion, and I speedily make him the very like of a saint. The Lord then commented on the ties of affection that bind a man to his parents, siblings, sons, wife, body, home, wealth, friends and family. His declaration follows.

इन सब के मोह ममता रूपी धागों को इकट्ठा कर उन सब को एक रस्सी में ऐंठ कर उसके साथ अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात समस्त कार्यों के प्रति आसक्ति छोड़कर मुझसे ही स्नेह करने लगता है, जो सबको बिना भेदभाव के समान देखता है, जिसके मन में और कुछ इच्छा शेष नहीं बची होती, जिसके मन में हर्ष शोक और कोई भय नहीं है। The aforementioned ties of affection are like so many strands which a pious soul gathers and coils into a rope to bind his soul to my feet. Further, he looks upon all with an impartial eye, has no craving in his mind, and is free from joy, grief, and fear. The Lord says that such a person should be regarded as a saint, that is, one who has subdued his mind, senses, and body, and who with a firm resolve has surrendered to God.

ऐसा साधु पुरुष तो मेरे हृदय में इस प्रकार निवास करता है जिस प्रकार लोभी के मन में धन का वास होता है। मुझे तो तुम्हारे जैसे संत ही प्यारे हैं, मैं अन्य किसी के अनुरोध पर अवतरित नहीं होता हूँ, अर्थात आप जैसे भक्तों के आग्रह पर ही संसार में देह धारण कर प्रकट होता हूँ। श्री रामा कंटिन्यूज, ए सेंट ऑफ सच डिस्क्रिप्शन अबाइड्स इन माय हार्ट इवन एज मनी रिजाइड्स इन द हार्ट ऑफ ए माइजर। Saints of your type, O Vibhishan, are dear to me, and it is for the sake of none else do I take incarnation or body myself forth. In this case, for the destruction of the wicked Ravana and for the protection of the virtuous Vibhishan.

दिशी फिराए तुलसी कहूं दरवाजा मिलो ना चारों दिशी फिराए तुलसी कहूं दरवाजा मिलो ना ऊपर से एक अजगर लटका तई ढरी अतारी चढ़ोना तुलसी किनारे कह तुलसी से हरि पर ध्यान धरो ना जैसे नेह करो हमसे वैसे रघु

0: का धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
2: मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा।
3: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया।
1: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
4: वो नहीं,
3: you know.
5: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

श्री हनुमते ॐ शन्नो मित्रा शन्वरुणा शन्नो भवत्यै नमः शन्नारेन्द्रो विलस्त।